0: जगत नहीं डोलाने
1: सुपर परे प्रेम रस रंग
0: उपजे चाहु साध के संग
1: परे शरण आन सब त्याग
0: अंतर प्रकाश अंधिन लिव लाग
1: बड़ भागी जपया प्रभ सोए
0: नानक नाम रते सुख होए
1: सेवक की मनसा पूरी पई
0: सतगुर ते निर्मल मत लई
1: जन को प्रभ होयो दयाल
0: सेवक कीनो सदा निहाल
1: बंधन काट मुकत जन पया
0: जन्म मरण दुख प्रम गया
1: इच पुनी सरदा सब पूरी
0: रब रया सत संग हजूरी
1: जिसका सात इंद्रिया मिलाए
0: नानक भगति नाम समाए
1: सो क्यों बिसरे जे काल न पाने
0: सो क्यों बिसरे जे किया जाने
1: सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया
0: सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया
1: सो क्यों बिसरे जे अगन मह रखे
0: गुर प्रसाद को बिरला लाख है
1: सो क्यों बिसरे जे बिकते काट
0: जन्म जन्म का टूटा गाड़
1: गुर पूरे तत एह बुझाया
0: प्रभ अपना नानक जन त्याया
1: साजन संत करो ए काम
0: आन त्याग जपो हर नाम
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो
0: आप जपो अवरे नाम जपावो
1: भगत पाए तरिये संसार
0: बिन भगते तन हो

0: जब तारी अपन सुन समाध
1: तब विरोध के संग कमात
0: जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत
1: हरक सो को किसे व्यापत
0: जब अपन आप पार ब्रह्म
1: कहाँ किस होवत परम
0: अपन खेल आप वर्ती जा
1: न करने हार न दूजा
0: जब होवत परम केवल तनी
1: तब बंद मुखत को किसको गनी
0: जब एक हर अगम अपार
1: तब नरक सुरक को कौन अवतार
0: जब निर्गुण प्रभ से सुपाए
1: तब शिव सकत कहो कित ठाए
0: जब आप अपनी ज्योत तर
1: तब कवन डर कवन कत डर
0: अपन चलत आप करन हार
1: नानक ठाकुर अगम अपार
0: अवनाशी सुख अपन आसन
1: जन्म मरण को कहाँ विनाशन
0: जब पूर्ण करता प्रभ सोए
1: की त्रास कहो किस होए
0: जब अविगत अगोचर प्रभ एका
1: चित्र कुपत किस पूछत लेखा
0: जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे
1: कौन छुटे कौन बंधन बाधे
0: अपन आप ही अचर जा
1: नानक अपन रूप आप ही उपरजा
0: जह निर्मल पुरख पुरख

0: जगदीश
1: लगत को कीस
0: ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै
1: किसे भूख कवन तृप्तावै
0: कर्ण करावन करन हार
1: नानक करते का नहीं सुमार
0: जब अपनी सो बापन संग बनाई
1: कवन मैं बा मित्र सुत पाई
0: जय सर्व कला आपे परवीन
1: बेकते का कोचीन
0: जब आपन आप उरतारै
1: सगन अप सगन कहा विचार
0: जय आपन ऊच आपन आप नेरा
1: कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा
0: बिस्मन बिस्म रहे बिस्मात
1: नानक अपनी गत जानो आप
0: जय अचल छेद भेद समाया
1: किसे व्यापत माया
0: आपस को आपे आदेश
1: तह गुण का नाही प्रवेश
0: जय एक एक एक भगवंता
1: कौन अचिंत किस लागे चिंता
0: जय आपन आप तियारा
1: कौन कथे कौन सुनने हारा
0: बहु बेअंत ऊचते ऊचा
1: नानक आपस को आपे पहुँचा
0: जय आप रचियो पर पंच अकार
1: तय गुण में कीनो विस्तार
0: आप उन तह पई कहावत
1: कौन रग को सुरग बंछावत
0: आल जाल माया जंजाल
1: हमें मोह परम पैपार
0: दूप सुख मान अपमान
1: अनेक प्रकार कियो बखियान
0: आपन खेर आप कर देखे
1: संकोचे तो नानक एक
0: जय अवगत भगत तय आप
1: जय पसरे पासार संत प्रताप
0: दूहू पाका आपे तनी
1: उनकी शोभा उन्हों बनी
0: आपे कौतक चर करे अनद चोज
1: आपे रस भोगन निरजोग
0: जिस पावे तिस आपन लाए

0: परे
1: संत संगंतर प्रमीठा
0: नाम प्रभु का लागा मीठा
1: सगल सामग्री एक कसकट माहे
0: अनेक रंग नाना दृष्टा है
1: नवनित अमृत प्रभ का नाम
0: देही मैं इसका विश्राम
1: सुन समाद अनत तैनात
0: न जाय अचरज विस्माद
1: तिन देखिया जिस आप दिखाए
0: नानक ते जन सो जी पाए
1: सो अंतर सो बाहर अनंत
0: भगवंत
1: माए आकाश पयाल
0: सर्व लोक पूरन प्रतपाल
1: मंतिन पर्वत है पार ब्रह्म
0: जैसी आज्ञा तैसा करम
1: पौन पानी बसंतर माहे
0: चार कुण तै दिसे समाए
1: तिस्ते पिन नहीं कोठाओ
0: और प्रसाद नानक सुख पाओ
1: वेद प्राण सिमरत मैं देख
0: ससी असुख नखतर मैं एक
1: पानी प्रभ की सबको बोला।

0: आप ला कर तूत अत नेकी
1: आपे जाने अपने जी की
0: आप साज तारी सब साज
1: ओ तो तापन संगराज
0: ताकि गतमित कहीं ना जाए
1: दूसर होए ता सो जी पाए
0: किसका किया जस परवान
1: गुर प्रसाद आने के हो जान
0: जो जाने ति सदा सुख होए
1: आप मिलाए ले प्रभ सोए
0: ओ तुन वंत कुल वंत पतवंत
1: जीवन मुकत जिस हृदय भगवंत
0: तन तन तन जन आया
1: जिस प्रसाद सब जगत तराया
0: जन आवन का एह स्वाओ
1: जान के संग।

0: चिंद
1: आस अनित्यागो तरंग
0: संत जना के तूर मन मांग
1: आप छोड़ बेंती करो
0: सासंग अगन सागर तरो
1: हर तन के परले हो पंडार
0: नान गुर पूरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: सासंग पज परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चितवो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख पंजन

0: जीवन सफलता का संग,
1: जाके मन लागा हर रंग,
0: जय जय शब्द अनाह दवाजै,
1: सुन सुन अनद करे प्रभु का जय,
0: प्रगटे गोपाल महात कै माथे,
1: नानक उदरे तिनके साथे,
0: शरण जोग सुन सरनी आए,
1: कर कृपा प्रभु आप मिलाए,
0: मिट गए बैर पे सबरे,
1: अमृत नाम साध संग लैन,
0: सो प्रसन्न पे गुरुदेव,
1: पूरन होई सेवक की सेव,
0: आल जंजाल विकार ते रहते,
1: राम नाम सुन रसना कहते,
0: पर प्रसाद दया प्रभतारी,
1: नानक निभे खेप हमारी,
0: प्रभ की उस्तत करो संत मीत,
1: सावधान एकागर चीत,
0: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम,
1: जिस मन बसे सुहोत निधान,
0: सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए,
1: प्रधान पुरख प्रगट सब लोए,
0: सब ते ऊंच पाए स्थान,
1: बहुर न होवे आवन जान,
0: हर तन खाट चले जन सोए,
1: नानक जिसे परापत होए,
0: हेम सात रिद्ध नम निध,
1: बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध,
0: विद्या तप जोग प्रभ ध्यान,
1: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान,
0: चार पदार्थ कमल प्रगास,
1: सबके मत सगल ते उदास,
0: सुंदर चतुर तत् का बेता,
1: समदर्शी एक दृष्टेता,
0: ये फल तिस जन कै मुख

इंद्र गावन तदनो साध विचारे गावन तदनो जति सती संतोखी गावन तदनो वीर करारी गावन तदनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग विद्या नाले गावन तदनो मोहनिया मन मोहन स्वर्ग मच प्याले गावन तदनो रत्नो पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावन तदनो जोध महाबल सूरा गावन तदनो खाणी चारे

प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम पारा सब त्यावै तुझी हर सच्चे सिर जन हारा सब जीत माड़े जी तू जिया का दा तारा हर त्या मोह संतोह जी सब दुख विसारण हारा

हाँ। ना हूँ जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणमत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरया। आसा महला पंजवा। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। अबर काज तेरा किता ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजा मिलाग पाव जल तरन कै, जन ब्रिथा जात रंग माया कर रहाओ। जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो शर्मा।

रक्षा होता ही सब काला दुष्ट अरिष्ट टरहि तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुर्छाछ सक न कोई।

कृपा करी हम पर जग माताओ ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता किल बिख सकल देह को हरताओ दुष्ट दुखी अनको छय करता। श्री अस्तोज जापै दयालाओ पूर्ण करा ग्रंथ तत्कालाओ मन बांछत फल पावै सोई दुख नत सब आपत कोई अड़िल। सुनै गोंग जो जाहि सुरस न पावई सुनै मूढ़ चित लाई चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट नंग तिन नर के रहै हो जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई। संबत सत्रह सहस पण जाय अर्ध सहस फुन तीन कह जाय भाद्रव सुधी अष्टमी रवारा तीरुस्तद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री

दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भगत ने तो सुर्ग बास रघुबर करा सगरी पुरुष समेत तो चौपाई जो यह कथा।

मानेउ सिमरत सासुर वेद सबाए भाव भेद कह हम एक न जानेउ श्री असपान कृपा तुमरी कारु मैं न कहो सब तो हे बखानेउ दोहरा।

भयो जिसका सब साधारु जे को खावै जे को पुंचा तिसका होय उधारु एह वस्तु तजी न जाई नित नित रख और धारु तम संसार चरण लग तरी आए सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक मोहल्ला पंजवा।

पौड़ी तिथै तू सम्रथ जिथै कोई नाहे उथै तेरी रख अग्नि उधर माहे सुन कै जम के दूत नाही तेरा छड़ जाहे पाव जल बिखमस गाहु गुर शब्दी पार पाहे जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे कल मह एहो पुन गुण गोविंद गाहे।

माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहे।

सदा सिद्ध दावन करता अद उर्द अर्धं अगं ओ घर्ताव परम परम परमेश्वरं पुरुष पालं सदां सर्वदां सिद्ध दाता दयालं छेदी अपेदी नाम काम समस्त उपराधि समस्त सस्ता तेरा जोर चात्री छंद है जले है थले है पीत है पे है प्रभु है जू है देश है पेश है उपजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्त निदाने नमस्तवंग नृनाथे नमस्तवंग प्रमाते नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग पंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपीसे नमो सर्वपीसे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो

बारह हमरे दुष्ट सबाए तुम काब हो आप खादय मुह बचाब हो सुखी बसाई मोरू परिवारा उन सेवक सिख सबाए करतारा मोर अच्छा निज कर दय कर आई सबैरण को वासन करया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की राह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवरण थ्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चौन चौन सत्तर हमारे मारिया है आप हाद मुझे बरियाई मरण काल का त्रासन वरियाई हु जो सदा हमारे पच्छा उसरी आस तो जो करे हो रच्छा राख ले हो मोह राखण हारे साहिब संस है प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चातर दास कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिव जी अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का की आत्मासा जमन काल जोगी सब की ओ वेदराज ब्रह्मा जूथी ओ जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार हता हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैतु जतन उपजायो आद अंत इकै अवतारा सोए गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोहबत कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंतरिया सूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछाना कट कट के पट पट की जाना जावद कर करा करता प्रजा तर तब दे

कृपा दृष्टम जाहन हर हो ताके ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध कर्म सब होई दुठ चाचु सकै न कोई, एक बार जिनत मैं संभारा काल फास्ते ताहु बारा।

संत प्यारे हो कत की करा कहानी कत केरी कित दवा ने पाई तन मन तन सब सौ गुर को।

क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग मह आया जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना मसाया गुर प्रसादी हर मन मसया पूर्व लिखिया पाया कह नानक एहो शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुर से चित लाया ए नेत्र हो मेले हो हर तुम जो तरी हर बिन अवरण देखो कोई हर बिन अवरण देखो कोई नदरी हर निहलिया एहो वे संसार तुम देख दे ए हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवरण कोई कह नानक एह नेत्र अंध से सतगुर मिलिया दिव्य दृष्ट होई ए श्रवण हमे देहो साचा सुन नैन पठाए साचा सुनना नू पठाए श्री लाए सुनो सतबाणी जित सुनी मंत्र हरिया हुआ रसना रस माणी सच अलख वडाणी ताकि गत कही न जाए कह नानक अमृत नाम सुनहो पवित्र हो बहो साचा सुन नैन पठाए हर जियो गुफा अंदर राके वाजा पवड़ जाया

0: पर कुनवन कोए धरत राजू तो लिए नव सगौरा हो अपराधी दूना निवे जो हंत मृक शीश नवाय क्या थी जर देख सुध जाए महला पिला
1: संध्यावादन शिल पूजस बगल समाधन मुख चोट फोकन सारंग त्रपाल त्याल विचार गलमालाटम धोए तोती वस्त्र कपाटं जय जान ब्रह्मं कर्मं सपक्ष निचो कर्म

गुरमुख आप निवारी है सब राज सृष्ट कर ले। जिमें हाथी दे सिर ते कुंडा हुंदा है, कुंडे दे अधीन हाथी चलदा है। गुरु दे हुक्म दा कुंडा अपने दिल दिमाग विच रखे, रहत मर्यादा विच परपक होके गुरु दे हुक्म विच होके गुरु दी मत नूं समर्पित होके चलदा। जिहड़ा गुरसिख सेवा सिमरन करदा है, आहरण जो सिर दे, जिमें आहरण लोहे का टुकड़ा चौरस एक रस थले पिया रहिंदा है। वड्डे वड्डे विदान वजदे ने, थोड़े सिर दे दिंदी, उहदे सिर दे उपर वजदे ने, अडोल रहिंदी है। इउं अपने आप नूं तर्कां कुतर्कां रूपी हथौड़े पैंदे ने। गुरु दे घर विच वी, सतसंगत विच वी कई तरह दे जीव हुंदे ने, सत्कार सन्मान देन वाले भी हुंदे ने बहुत, निमन वाले झुकन वाले भी हुंदे ने, सेवा सिमरन दा सन्मान दे करन वाले, खड़में सुभाव वाले भी हुंदे ने, जिन्हां ते किरपा नहीं होई हुंदी। अपनी मन मत विच अपनी आदतां जिहड़ियां हुंदियां ने, मुंडा दी खसलत ना गई है मूड़े अंदर, विछड़ चोटां खाए मुढ दी आत नहीं जांदी, वारे शाह ना आतां जांदियां ने, भावें कट्टीए पोरियां पोरियां जी। अपने आप नूं बहुते सियाणे जो विखाउंदे ने, हर एक दी परवाह नहीं करदे किसे दी। सो इस तरीके नाल बोली भी मिठी नहीं हुंदी, दुखदायक हुंदी है, धरी धराई नहीं रहण दिंदे। इहो जिहे भी संगत विच हुंदे, साई तां सारी तरह दे हुंदे ने। तर्कां कुतर्कां नूं सहारना सट्टां, अहरण जो सिर दे, मन तन आगै राख कै उबी सेव करे। मन ते तन गुरु दे अगे रख के उबी सुचेत हो के खड़ के एक रस खड़ो के सिद्धा चल के सिद्धा खड़ो के डोल रह के सेवा करे। फिर महाराज सच्चे पातशाह जी गुरु दे सन्मुख हो के जदों चलदा गुरु दी मर्यादा विच, गुरु दे उल्ट नहीं कोई सेवा करदा होया, सिख सावधान रहिंदा है। हो सावधान अपने गुर सिओ, अपने गुरु दे नाल।